आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट्री कमेटी क्रिटिसाइजेज मेटा ओवर रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वीडियो फ्रॉम फेसबुक, सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम सीईओ मार्क ज़करबर्ग। NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi this morning. Supreme Court says state governments can close or withdraw FIRs against students involved in recent protests. US President Donald Trump warns Iran of last chance